0: নাচিলে ভাঙলেন আয়া জোদাসাই উক্তিবিয়ের ঝোলাবা নাচিলে ভাঙলেন আয়া জোদাসাই উক্তিবিয়ের ঝোলাবা বাবুলে ভাঙলেন আয়া জোদাসাই আইফোন মোবাইল হাতবা বাবুলে ভাঙলেন আয়া জোদাসাই আইফোন মোবাইল হাতবা নানিলে ভাঙলেন আয়া জোদাসাই প্যাকিংয়ের নাও বাজারবা নানিলে ভাঙলেন আয়া জোদাসাই প্যাকিংয়ের নাও বাজারবা দিদিলে ভাঙলেন বৈনিলে ভাঙলেন আয়া জোদাসাই মাইতি ঘরে রে বৈলো দিদিলে ভাঙলেন বৈনিলে ভাঙলেন আইহা জোদাসাই মাইতি ঘরে রে বৈলো পুতুলে ভাঙলেন আয়া জোদাসাই দাদাইকো চৌতারিমা সারখে তুমি ছাইনারা পুতুলে ভাঙলেন আয়া জোদাসাই চৌতারিমা সারখে তুমি ছাইনারা সারখে তুমি ছাইনারা
1: হাজুর
2: এটি নিয়ে আনুন চা
1: हजुर फेरि अर्कै बताइमा आउनु पर्ला भन्न चाहे
2: हुन्छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद नजिक नजिक दसैँ आइरहेको छ दसैँको विषयमा गीत गाइदिनु भयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकैछिनपछि हामी गीत बजाउँछौँ कुकुरलाई सम्झना चाहनुहुन्छ
1: हुन्छ स्पेसली रूपमा अनियरमा रहेर स्विट भोइसमा प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुहुने नानी हजुरलाई
2: हजुर धन्यवाद
1: प्रविधि कक्षबाट हजुरलाई साथ सपोर्ट गर्नुहुने नानीलाई र रेडियो हो युनिटलाई घर फ्यामिलीलाई सहभागी जनाउनुहुने मेरा सम्पूर्ण साथीहरूलाई र जहाँ जुन माध्यमबाट भए पनि हाम्रो प्रिय कार्यक्रम सुन्नुहुने सबै सबैलाई आउँदै गरेको विजय दशमीको शुभकामनाका साथ सम्झँदै जय गीत जय संगीत नमस्कार भाई हर गुड डे
2: हुन्छ नमस्ते बाई हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो तनहुँबाट टेकु छेत्री हुनुहुन्थ्यो श्रोता मित्र अब पनि तपाईँहरूको पालो आइसकेको छ 0663 5883 डायल गरेर मिठा मिठा कुराकानीमा जित्न सक्नुहुनेछ यति बेला भने कोही साथी कल्याण आइसक्नुभयो उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र नमस्कार
3: नमस्कार
2: हजुर नमस्ते के छ खबर दसैँ भित्रिसक्यो है सुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ कि नाइ सुन्छ समय पनि छोटो छोटो छ कुन चाहिँ गीत गाउन चाहनुहुन्छ सुरु गर्नु होला है त ओके हुन्छ
3: आयमा इतर खाली भार केही नालिएर